सत्य आनंद शांति धर्म आनंद सत्य साई प्रेम साई चाहिए श्री बाबा सत्य बाबा प्रेम बाबा चाहिए